आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस

0: दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, जीवन में पहली सफलता की बात रुकी नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 317। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। 10 बॉम्बे टॉकीज में पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग अवंतिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। ग्यारह बजे विविधा में प्रस्तुत होगा सत्येन कप्पू दुर्गा खोटे चित्र भारती पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नाग में, 3 मन चाहे गीत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा भाग, महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण, रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। शाम 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा, इस बातचीत का पहला भाग आज, प्रस्तुति अनु

शाम 5:30 पर तराने, नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता आपको फिर से याद दिला दें। श्रृंखला सुनेगा ख्याल और तरानों की विशेषताएं, भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुल उत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7:00 सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा सुनेगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत। आलेख स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी चिट्ठी, लेखक सुनील हेत्री अब्राहम, निर्देशक गुरमीत रामल मीत। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर। 10:00 छाएगी 10:30 पर ढलती जाहिरात और 11:00 सुनेगा विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 317।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 317, आज आपने सुना।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी, संवादी, न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

अब मैं द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। इसमें कूट तान, पेंच, बल, छूट, जरब और गमक तानों का प्रयोग है। यह क्लिष्ट जरूर है, किंतु श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। तो करुण रस प्रधान इस बंदिश को आप सुनिए।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं प्रस्तुत करता थे जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार, स्वागत है।

अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सी रामचंद्र की धुन थी। लीजिए अब सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में हमदर्द फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे प्रेम धवन, संगीतकार थे अनिल विश्वास।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से

नौकर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, मजाज लखनवी के बोल थे और सरदार मलिक का संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने रामी धोबन फिल्म से लिया था। गीता रॉय की आवाज थी, राम मूर्ति चतुर्वेदी की रचना और हीरेन बोस की तर्ज थी। और इसी अभी जो गीत आपने ठोकर फिल्म का सुना, इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: देखो डर मरे

आपकी कसम फिल्म का ये गीत। इस गाने में आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

कसम आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की ये रचना आपने सुनी राहुल देव वर्मन की तर्ज थी। अब लीजिए सुनिए दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। इसे आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

आइए फिर स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अभी आप ये गीत जो सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलशन बाबरा का।

0: हाथ की सफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
4: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
3: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
4: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
3: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
4: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध

कसौटी फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए कागज की नाव फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और मनहर की आवाजें हैं, नक्श लायलपुरी की रचना, सपन जगमोहन की धुन।

कागज की नाव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मनहर की थी, रचना नक्श लायलपुरी की थी, संगीतकार थे सपन जगमोहाने सी। गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से

0: अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को

0: संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे। हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किउमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर ये परत आंखों की सतह पर फैलती रहती है।

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है, तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती मुंबई FM 102.8 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे मराठी समाचार आकाशवाणी पुणे केंद्र से।

अलबेला सजन आयो रे बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित और साथियों के। संगीतकार थे आदित्य देव। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत लीजिए सुनिए।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल के और साथियों की आवाजें थी, गीतकार और संगीतकार थे अमाल मलिक प्रीतम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

आज है वर्ल्ड क्लीन अप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस। 20 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए हमें प्रेरित करता है। साथ ही कचरे की समस्या से निपटने के लिए हमें प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सफाई सिर्फ अपने घर या कार्यस्थल की सफाई तक सीमित नहीं है। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, जल स्रोत, समुद्र तट और हमारे आसपास का पूरा पर्यावरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, हमारी साझा जिम्मेदारी है। अनियंत्रित कचरों से जल, मिट्टी, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। ये हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है। इसका समाधान केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कचरा फैलाने वाला हर व्यक्ति कचरे को साफ करने में अपनी उचित भूमिका निभाए, ये काफी हद तक निदान हो सकता है।

घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, कागज आदि जैसे योग्य वस्तुओं का रिसाइकल पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थलों को गंदा ना करना और इसी तरह खाने पीने की चीज़ों को यानी भोजन और पानी की बर्बादी को कम करना, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। तो आइए विश्व सफाई दिवस पर हम खुद भी सफाई का ध्यान रखें और अपने परिवार और आसपास के लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करें, बच्चों को अवश्य सिखाएं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते और सुनते हैं एक और गाना। ये गुलाब गैंग फिल्म का गीत।

माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढल

0: ने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत आप कृष्णा की आवाज में सुन रहे थे। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने धुन बनाई थी।
1: तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस है। हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के महत्व को रेखांकित करने और विद्यार्थियों के जीवन में शारीरिक गतिविधियों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्वविद्यालय ज्ञान और बौद्धिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के मैदान में सफलता और असफलता दोनों ही का सामना विद्यार्थी को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

आज की जीवन शैली में शारीरिक निष्क्रियता काफी बढ़ गई। कहा जाए तो ये प्रतिबद्धता भी है, जैसे लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना, डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग, व्यायाम के लिए समय न निकाल पाना स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं और नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

विश्वविद्यालय में खेलों का महत्व सिर्फ प्रतियोगिताओं और पदक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम भावना, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश स्पष्ट है कि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, प्रशिक्षित प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा होने के साथ साथ संतुलित और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चकते इंडिया फिल्म का गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में आप सुन रहे थे। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नक्श अजीज अंतरा मित्रा की आवाजें थी, मयूर पुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल, सोना महापात्रा की

श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज़ों में आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर केंद्रित होगा। फिल्मकार महेश भट्ट पर आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। सुनना ना भूलिएगा।

लक्ष्मी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी शशि डीजे खुशी की, गीतकार थे गगन आहूजा और संगीतकार शशि डीजे खुशी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत, सविता सिंह को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period, 10th August to September 30th, 2026. So, what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India.
2: अपने आप को ढालते हुए
3: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
5: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार

बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई। और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम की किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन ख़त्म हो जाए तो बाहर आके ज़रा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति। उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई, धक्के खाए यहाँ वहाँ। और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी हैं, शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था। मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years वेस्टेड। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई, अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑबिचुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। यह विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद अ फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं। तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए, उसको आप अगर किस्से कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विद सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान से अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेस ख़त्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज़्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी। मगर ये जो पिछले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है। कहीं पर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसके लिए मैं मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा हैं, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं।

मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ, और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड्स मिले तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: प्यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथा वस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई रास 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी, और आकाशवाणी से पूर्णिमा के गायक गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
4: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
3: जी,
4: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
3: जी,
4: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं
3: जी,
4: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
3: जी,
4: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्य हो गई आज।
3: ये आपका बड़प्पन है,
4: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
3: जी
4: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
3: जी। जी,
4: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
4: जी, जी।
3: वहां तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई, और वहां पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
4: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
3: अच्छा।
4: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
3: अच्छा।
4: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
3: जी।
4: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्नादा के साथ, मन्नादा जी के साथ।
3: अच्छा।
4: आए मन्नाडे जी के
3: जी,
4: साथ
3: जी।
4: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
3: जी
4: उनको असिस्ट किया।
3: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजाते हैं।
4: हाँ।
3: जी।
4: तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहां पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
3: अरे क्या बात।
4: मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
3: अच्छा।
4: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है
3: जी जी।
4: बस फिर डैडी ने बहुत अपने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता
3: जी, जी
4: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त।

0: और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है, पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है डैडी कहीं वहां पीछे रह गए। बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
1: जी जी जी।
0: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे
1: जी,
0: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
1: अच्छा,
0: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर काका, किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा है।
1: जी जी जी। आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
0: जी।
1: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
0: बिल्कुल। मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स हैं यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
1: जी,
0: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद
0: जी,
1: करते
0: जी,
1: हैं किसी न किसी।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो। और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं। मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थीं और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज़ मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या, मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार,
1: है ना,
0: संगीतकारों का,
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के, वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा
0: जैसी जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल,
1: बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उनसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार है के साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं, तो वो डबल हो गया।
0: आप ही का गाया हुआ सुनते हैं
1: जी, बिल्कुल
0: पसंद का गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी।
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर, गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके, फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी।
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी।
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ, थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967, हाँ
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह।
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए, और मैं भी मान गई। उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे,
1: बिल्कुल
0: ना, ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो सकता है तो कुदरत ने शायद, हो सकता है कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल। तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने, पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो।
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा।
1: जी
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक हाँ। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात। तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही है
0: ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं बस, मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस तो दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से, मैं 7 साल की थी तब,
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी।
0: कि

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है। वो आए थे शो देखने और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त
2: जी,
4: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज़, और शंकर जी, जय किशन जी

0: जी नहीं,
1: अच्छा
0: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे।
1: अच्छा,
0: छोटा मुंह बड़ी बात पर वो अलग हो चुके थे। तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे। सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे। तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी को,
1: मोरली, है ना जी जी।
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ। सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
1: अच्छा
0: बतौर स्क्रिप्ट राइटर्स,
1: जी बिल्कुल,
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
1: हाँ,
0: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट,
0: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को
1: जी।
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सेबेस्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहाँ गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत। तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक। अच्छा, तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पात पंचम तक लेके गए। बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी,
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी,
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आए
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, तो इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था, और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन। फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी।
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदा के नीचे। तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस वक्त, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए, नजराना।
1: वाह, वाह।
0: ये एक हमारे गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको तो नजराना हाँ,
0: एक नजराना देते
1: प्यार
0: हैं
1: का प्रतीक,
0: बिल्कुल
1: है, स्नेह का प्रतीक,
0: और उनको एक प्रोत्साहन देने
1: जी,
0: के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है। तो, यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता
1: है, शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का, तो कैसा
0: बिल्कुल। और पता है मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुल बुलो तारा है ना बोलो बोलो तर पा पा पा बापा बोलो बोलो

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमी, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी।
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा। क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब SD बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी,
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है और बाल बराबर आशा काके की उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काके की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
0: जी,
1: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया GPCP प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
0: जी
1: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था
0: हाँ,
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
0: हर जवान,
1: और यही पूरा था ना
0: हाँ,
1: GPCP प्रोडक्शंस
0: हाँ,
1: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी
1: वही पूरा देखिए खेला
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता हाँ, था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: अभिन्न हिस्सा बनेंगे
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूं
0: जी, जी
1: देखिए
0: जी
1: ये वक्त का खेला
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है
1: एकदम।
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: चले।
1: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त। थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ, बप्पी लाहिड़ी, रविन्द्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
1: अच्छा।
2: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते
1: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
2: अच्छा, मंदाकिनी जी देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
1: जी।
2: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको, एक फिल्म आई थी औलाद,
1: जी।
2: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
1: लाडला।
2: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका,

0: अरे ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं
1: जी
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए,
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता है
1: कहा। और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए,
1: जोड़ता
0: है ना।
1: है। बिल्कुल
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
0: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
1: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में इतिहास में जाने वाले हैं।
1: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
0: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
1: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमयी अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
0: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी।
1: जी।
0: और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
1: अच्छा
0: जी,
1: महाराष्ट्र से थी।
0: जी हाँ, आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है वहां उनके पिता रहा करते थे।
1: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत जी,
0: जी
1: कि दुर्गा खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने के बहुत ही अजीमुशान शाहकार जिसे कहते हैं ना, पृथ्वी वल्लभ, उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया था। वैसे तो दुर्गा खोटे जी हमें याद आती हैं सलीम की माँ के रूप में।
0: जी हाँ, जो धवाई का अभिनय उन्होंने फिल्म मुगले आजम में किया था।
1: जी हाँ, लेकिन पृथ्वी वल्लभ इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें वो साज सिंगार कर रही हैं। तो इस गीत को सुनाते हैं, उसके बाद हम दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के,
1: क्या बात,
0: फिल्म का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दें श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी।

0: अयोध्या का राजा यानी अयोध्या का राजा, और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी, और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही।
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है।
0: जी,
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं, जो हमारे संग्रहालय से हम चुन कर लाए हैं।
0: अवश्य, और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था।
2: जी, तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलायत खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल।
2: जी,
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले।
2: जी।
3: असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं। मैं आपको
2: उसमें झगड़ेलू सास करता
3: है। ओहो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे किसी शादी नहीं करती।
2: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
3: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम देना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
2: रसोई वगैरह का भी शौक है?
3: हाँ, मुझे बहुत शौक है, महाराष्ट्रीयन पद्धति का। और पद्धति मैं नहीं जानती, लेकिन और लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ, मालूम नहीं।
2: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
3: मुझे गाने का शौक था ही।
2: जी।
3: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
2: अच्छा, विदेश भी गई होंगी?
3: हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआई, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
2: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी जरूर?
3: हाँ, मैं काफी लोगों से मिली।
2: और तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज्यादा तरक्की पर है भारत की निस्बत?
3: हाँ, ये जरूर है कि वो हमसे आगे बढ़े हैं, हालांकि टेक्निकली मैं समझती हूँ कि उनको काफी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने। करने का।
2: जी हाँ जी हाँ।
3: एक्सपेरिमेंट से लोग तो बढ़ ही जाते हैं आगे, हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता।
2: अच्छा, अभिनय की दृष्टि से?
3: अभिनय की दृष्टि से मेरा ख्याल है हमारे यहाँ वाकई बहुत अच्छे और बहुत इंस्टिंक्टिवली जो लोग हैं आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा आर्टिस्टिक है। एक तो हम ज्यादा सेंटिमेंटल भी लोग हैं, भावना प्रधान हम लोग हैं, और वो भावना हम कभी दबा क्यों नहीं रखते, बताते हैं।
2: अच्छा, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जिसको आपको याद करके हंसी आ जाती है अभी?
3: मुझे तो अभी भी उस बात की हंसी आती है जब मैंने पहले भवानी साहब के पिक्चर में काम किया था।
2: जी।
3: तो मैंने समझा न जाने मैंने कौन सा बड़ा काम किया, और बड़े शौक से उम्मीद से मैं वो पिक्चर देखने गई।
2: जी।
3: जब देखा वो इतना भयानक था कि मैं वाकई बहुत डर गई। न मैंने मेकअप किया था, न मैंने कुछ इसके बारे में सोचा था। जिस उम्मीद से मैं गई थी और जो मैंने देखा, उसके जब याद मैं करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वाकई लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जब देखते हैं तो क्या देखते हैं। काश कि लोग अपने आप को ऐसे देख सके।
2: अच्छा दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी।
3: नहीं शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चंद लफ्ज कह सकी। नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने। ये हमारी एक खास धरोहर है। और अब आगे बढ़ें हमारी बातचीत में। हमने इप्टा की बात की थी जब हम दुर्गा खोटे जी को याद कर रहे थे। इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं। उनके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन उस कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं।
0: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से।
1: जी।
0: और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक।
0: जी हाँ। और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे।
1: जी।
0: और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए।
1: क्या बात है।
0: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब। और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला।
1: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में जिंदा हैं। शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो दिखते
0: और
1: हैं,
0: और रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता, और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं। और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब है या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला।
1: तो सत्येन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं, और इनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सत्येन कप्पू जी को।
4: मेरा यानी सत्येन कप्पू का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूं जिन लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली है और जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिराक गोरुपुरी साहब की। लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बे आग भी जल जाते हैं जलने वाले। ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी, और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया, और जब बम्बई आया तो यहां मैंने श्री बल्लाज साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमलाय जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं, कुछ तो निशानी छोड़ जा।

बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर कि जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली भी मुझे परेशानी हुई।

डैम को जहां मैं काम कर रहा होता हूं उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गांव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूं। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बता ले कि भाई सत्यन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी मुझे कहने लगी, ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थर से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया, मैं बाहर आया। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। अब यकीन मानिए मेरे पांव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता, कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

गम से रंजूर ना हो ऐ यारो, गम से रंजूर ना हो ऐ यारो, गम भी उसी की ही मेहरबानी है। जिसको गम मिल सके ना दुनिया में, उसकी क्या खाक जिंदगानी है। सुख और दुख ये तो जिंदगी के हिस्से हैं, जिनसे हम अपने आप को कभी परे नहीं कर सकते। कभी कभी जिंदगी हर तरह से भरी पूरी होने के बावजूद ये एहसास दिला देती है कि कहीं वो खाली हो गई है। मैं आपसे

मजाहिया करेक्टर हो या गंभीर करेक्टर हो, वो जितने सोबर थे अपनी जिंदगी में उतने मजाहिया भी थे। मुझे एक हादसा याद है, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी की, तो मैंने उनसे 3 रुपए उधार लिए थे। मैंने कहा भाई मुझे 3 रुपए दे दो, तो कहने लगे भाई कब लौटाओगे। मैंने कहा कल लौटा देंगे। हुआ ये कि पैसे साहब वो मैं उनको नहीं लौटा सका। वक्त गुजरता गया, संजीव कुमार साहब बहुत बड़े हीरो बन गए और मैं भी छोटी छोटी फिल्में करने लगा। एक दिन मालूम हुआ कि उनकी और मेरी शूटिंग एक साथ एक ही फिल्म में है, तो मुझे उन्होंने कहा भाई तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम चले चलेंगे साथ में। तो मैं उनके घर पहुंचा, उनकी गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने कहा भाई संजीव आपने वो पहली गाड़ी जो ली थी कितने की ली थी। कहने लगे भाई वो पुरानी गाड़ी थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी 6,000 में ले ली थी। तो मैंने कहा संजीव काम करो भाई, तुम वो गाड़ी तो मुझे भेज दो। देखो भाई मैं नया नया आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ और इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे देता हूँ अभी और बाकी 3,000 मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अच्छा भाई जब स्टूडियो पहुंचने को हम आ गए, यानी स्टूडियो नजदीक आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई संजीव वो तुमने वो गाड़ी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, 2,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3,000 तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगा। तो फौरन बोले कि भाई 3 रुपए तुमने लिए थे आज से 15 साल पहले, अब तक नहीं चुकाए, ये 3,000 रुपए तो शायद तुम मेरे साजनम भी नहीं चुका पाओगे। वो कलाकार, वो महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो उन्हीं की याद में मैं आपको उन्हीं की एक पिक्चर खिलौना का गीत सुनाता हूँ।

0: सतीन कपूर जी की आवाज हमने सुनी और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय

0: attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
1: फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
2: ये 6000 सालों पहले देखा था,
3: वो शक्ति वापस आ गई।
1: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: नानू दट्ट अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
3: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला।
3: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
4: गरुडन नोड़दागा रॉकी कन्फर्म आयतु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತ ನಾಗ್ ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೆ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. हिंदी में अनंतनाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय। अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
5: हंस क्यों रहे? हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिसालदार के नगर पोते मीर रोशन अली में हंस रहे।
6: जरा होश में आइए हुजूर। जरा हाँ
7: सुनिए मेरी बात। सुन
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली, बड़ा प्यारा नाम है।
2: मेरा नाम नंदू है।
1: अच्छा नाम है ना?
3: और बारह पुत्रा नहीं?
1: चल, तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल है ना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा, मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली बोल, सुन।
2: क्या?
1: तेरी कुड़माई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी आर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सुवा में आयो रे संदेशवा के चल आज देशवा के ओ।
1: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
2: इस बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा।
3: बोलो।
2: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
3: सो तो आते हैं फिर?
2: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
3: अगर मैं मार लूं तो?
1: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
4: गजब हो गया।
2: क्या हुआ?
4: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
2: खेल रहे हैं
4: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
2: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
4: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
2: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
4: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
1: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं।

0: जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974। कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए। संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान की

0: और फिल्म इजाजत के लिए साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अमेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा

0: ये दिना की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसे ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत थी 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में, गाना अच्छा करने की कोशिश की। संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहते
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती, क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ, कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ।

0: शीश। स्मृति शीश में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
1: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी। कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: तो अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है, हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले लें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: केके को आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लव स्टोरी फिल्म से गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी ने से लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। और आपके संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों के सफर के साथ शाम की सुहानी बातें होंगी और कुछ शामें दिल में उतर जाती है। विविध भारती जब शाम को नए पुराने गीत सुनाता है तो वे शामें अद्भुत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर हो या रास्ते का, यदि हम सफर अच्छा हो तो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। वो दूर से उगता हुआ सूर्य, नीला आसमान, पहाड़, नदी और शाम को ढलता हुआ सूरज और बाद में चांद, ये सब प्रकृति के नज़ारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं, शाम ढली तो कोई ख्वाब सा मिला, राहों में जैसे कोई जवाब सा मिला, न वादा हुआ न इजहार की बात, बस साथ चला कोई और सफर खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफर भी एकदम खास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर में एक लड़की और एक अनजाने व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफर करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। ना कोई बड़ा वादा,

कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाह हो तो सफ़र कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, जरा साझा कीजिए अपने संदेशों के जरिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतजार और साथ ही ये गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर मेरे यानी अनुराधा के संग और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतजार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं, तो धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है, आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफर का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज का नाता जो है सुरीला सफर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मजा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफ़ी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफर के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए और कुछ दिलचस्प संदेशों का इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि किस तरह से इतवार का दिन निकलता है, आज क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी दिन की क्या प्लानिंग रहती है, क्या कभी सोमवार ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल जाना है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी शनिवार रविवार के बाद जब सोमवार आता है तो शाम होते होते कैसा महसूस होता है रविवार के दिन, बताइए मुझे।

दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम। और ये गीत आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, से लिखा राजेश रोशन का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि

कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है। फिर वे पहाड़ों में, वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीतमय सफ़र के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूं और आपके साथ ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज़ ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आए कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के संग।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत आपने सुना, शर्मीली फिल्म से नीरज ने इस लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ, फर्क तो बहुत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए और आप बने रहे हमारे साथ। इस प्रोग्राम से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर ये परत आंखों की सतह पर फैलती रहती है।

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है, तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें बोलती हैं और संवेदनशील मन सुनता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत

0: राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि भूमि और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य

0: सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम

0: तक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

जब इश्क किया तब सोचा नहीं, हाँ जब इश्क किया तब सोचा नहीं,

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्म से। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज़ में गीता भी आप सुन रहे थे। साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

मन्नाडी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने।

राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना भूपेंद्र, झवर तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

से सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा, प्रतीक ने इसी गीत की और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा, पैरी, पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी। यह है विविध भारती।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्नवासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफालिका फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चीटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
0: नहीं नहीं, और न तोड़ो।
1: क्यों रोकती हैं?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं?
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासवदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र,

0: अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
1: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले, असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
2: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
3: हाँ हाँ वही तो है चेटी। अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
2: आओ यही करें राजकुमारी।
1: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
0: कैसे जाना वसंतक?
1: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
0: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
1: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
0: अच्छा चलो।
2: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं।
3: हाँ हाँ ऐसे ही करो।
1: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
0: अरे अरे अरे मधुकरों को भयातुर न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
1: जी
2: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
3: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
4: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
2: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।
1: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
0: पूछो वसंतक।
1: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
0: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
1: मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
0: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
1: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक कहाँ है।
0: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
1: अब देवी वासवदत्ता कहाँ है, वे तो कभी की परलोक सिधारी।
0: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते, वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता, उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
1: अरे अरे आपका मुख आंसुओं से भीग गया, चलो मुंह धोने के लिए।

0: पानी लाऊं।
1: अवंती के आरी का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहाँ से निकल चलें।
2: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरें, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ।
1: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चले।
3: सचमुच जाऊं?
2: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
4: आर्य की जय हो।
5: पद्मावती बैठो। जल आए बसंत तक।
6: जी
5: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
4: अथवा किसी दुख से?
5: नहीं पद्मावती नहीं।
6: महाराज उदयन, अपराहन वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
5: ठीक कहा बसंतक, आओ चलें।
7: मधुरी के, ओ मधुरी के, जल्दी इधर आ।
4: आई
7: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
4: राजकुमारी कहाँ है?
7: उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ये संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजन शीघ्रता करें, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनकी शैया समुद्र गृह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव, उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें?
2: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासु दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
2: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: कि कितना निठुर है ये पद्मावती, जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती, अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासव दत्ता।
3: अरे ये तो आर्य पुत्र है, यहाँ कैसे?
0: प्रिय,
3: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंधरायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंति, की राजपुत्री।
3: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
0: प्रिय आशीष,
3: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
0: क्या तुम कुपित हो?
3: नहीं, दुखी हूँ।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
3: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
0: प्रिय
3: आर्य की स्वप्नावस्था है। यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
0: प्रिय
3: चलो, चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
0: ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्त, ठहरो।
2: अरे ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन जाग गए आप?
2: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या
2: वासव दत्ता जीवित है?
1: हाँ, वासव दत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गए।
2: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
1: समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासव दत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
2: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता। यदि ये भ्रम है तो वो सदा बना रहे।
1: समझा राजन समझा। इस राजगृह नगरी में अवंति सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
2: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा। मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो। स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
1: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
4: चलिए राजन चलिए।

0: आइए कंचुकी।
1: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
0: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
1: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
2: आर्य, मैं हूँ विजया।
1: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए हैं।
2: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
1: क्यों?
2: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था,

0: घोषवती का स्वर? ये तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता वो कहाँ है?
1: आप सोचें इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे।
2: विजया जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य। स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
3: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
1: जो आज्ञा प्रभु।
4: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
3: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
4: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
3: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
1: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
3: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
5: आर्य पुत्र की जय हो।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
3: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
7: सकुशल हैं और आप सबके कुशलार्थी हैं।
3: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
7: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
3: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ, बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो है?
6: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
3: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है।
6: राजन संताप न करें।
7: स्वामी धैर्य धरे, महासेन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर हैं, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
3: वासव दत्ता को मैं

0: कैसे भुला सकता हूँ?
1: राजन, राजमहिषी अंगारवती में कहा है, वासुदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्रफलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
0: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
2: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
1: ये देखिए पद्मावती जी।
2: अरे
0: देवी, क्या बात है?
2: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासुदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
0: यहाँ?
2: हाँ आर्यपुत्र।
0: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
2: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
0: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप स्वामी मिल ही जाता है।
3: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
0: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
2: संभव है वही हो।
0: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
3: जो आज्ञा प्रभु।
0: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
2: जी।
4: जय हो, आपकी जय हो।
0: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
4: हाँ राजन।
0: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
3: आर्यपुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
0: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
1: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
0: मेरी प्रिया वासुदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासुदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
4: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्रो राजधर्म के आचार्य है, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
0: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
4: स्वामी की जय।
0: महामात्य।
2: आर्यपुत्र की जय।
0: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंधरायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
5: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
0: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंती का ही आर्या वासुदत्ता है। आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
1: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
0: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
5: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
0: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
5: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
0: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
5: हाँ राजन, सभी जानते थे। महाराज उदयन, रैभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
0: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे।

0: और हमारे साथ वासव दत्ता भी होंगी।
1: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई।
2: और मेरा स्वप्न

ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 4 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है
तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्र को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले

प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। विविध भारती का ये मुंबई केंद्र है 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। हमारे स्टूडियो के घड़ी में 4:09 और 45 सेकेंड हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पिटारा। आज पिटारा के तहत आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के
1: इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच के लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे। हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा। और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता। और वो चले गए छोड़ के,
2: बम्बई छोड़ के चले गए।
1: नहीं, घर में छोड़ के चले गए।
2: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैं कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे।
2: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहाँ चले गए, वहाँ देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके। तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
2: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही?
1: 12 वर्ष।
2: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं। डैडी नाम, डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह।
2: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था।
2: जी।
1: हिंदी में
2: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज BA या MA है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
2: अच्छा।
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर।
2: जी जी।
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
2: अच्छा।
1: आज जो पाकिस्तान में है।
2: हाँ।
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे। तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे।
2: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए। तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
2: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप।
1: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई।
2: जी।
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे।
2: जी।
1: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 या 2 साल सीखा हूँ।
2: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है।
2: जी।
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊँ।
2: वो कहानी में आगे आएगा।
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुआ।
2: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में।
2: जी।
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही।
2: जी।
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
2: बाप रे बाप।
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
2: 13.5 घंटे,
1: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
2: ओहो।
1: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक,

0: 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4:30-5 बजे।
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
0: नहीं
1: बच्चों के साथ खेलें?
0: कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
1: जी,
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहाँ पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा,
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ आई है? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया और रात को 9 बजे के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी जी,
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए,
1: हाँ
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल,
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: वो भी
1: मोहम्मद शफी के साथ,
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा,
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी माहिम में। और वहाँ जब पहुंचे, सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए, अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है, तो आके कुर्सी में बैठ गए। तो सभी से बाहर आए, हाँ पीटर आ जा, उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती जी।
0: तो उन्होंने आया, पीटर आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गया या 9 हो गया, 8 हो गया, जो भी था याद नहीं था। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया, आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया, और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ, तुम बजाओ, और मैं नहीं बजा सका उससे।
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे, मैं मुझे हुआ क्या। शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है, यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे।

0: हम लोग आए तेरे प्रैक्टिस करते थे, फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी
0: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए,
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूँ ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे,
1: ओ
0: शायद फटी होगी
1: जी जी,
0: ध्यान नहीं है
1: जी जी,
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं कहा डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, भाई जो पैसे दिए, वाहेगुरु जी को माथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है
1: 12 बरस की उम्र में,
0: नहीं 14 बरस हो गया,
1: अच्छा
0: 62
1: जी जी
0: 14 बरस
1: जी,
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले चलो उठो चलो चलते, कहा चलो ना, निकल पड़े, तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी दादर गए, दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं, तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
1: गजब,
0: 2 मेरे लिए 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट,
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया, बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या राम प्रसाद जी क्या डालो,
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे,
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे, और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस किए और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है, हमने
1: जी, कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे,
0: बाबा जी बोलते, नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी,
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने,
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ,
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं,
0: मेरे लिए,
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे,
0: लाडला बच्चा भी कहते थे, और मुझे राम सिंह कहते थे,
1: अच्छा
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था,
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे, राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे, इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी,
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं,
1: गजब,
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी,
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो
1: जी,
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे ये मेरा राम सिंह है,
1: वाह,
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है,
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे,
0: जो भी था
1: उस वक्त प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था,
1: अच्छा,
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणी,
1: हाँ 63 में आ गई थी,
0: 63 में आ गई थी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भाई वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे, उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ,
1: अरे वाह वाह,
0: मैं भी उनके पास गया था, तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पर किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पर किसी को भी ये चीज नहीं मिलती, उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन,
1: अरे बाप रे, और आपकी इतनी कम उम्र,
0: ये शायद 63-64 की बात है, मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े,
1: जी जी शेख मुख्तार,
0: उनकी फिल्म थी वो,
1: वाह,
0: 6 फुट के थे,
1: हट्टे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो, इनका बैकग्राउंड चाचा कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा, हमने 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया, आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप,
0: 15-16 साल की उम्र में।

0: भोपाल।
1: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
0: जी,
1: तो हम सब बजा रहे थे। मैं सर थर्ड रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
0: वाह वाह,
1: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा अच्छा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
0: कौन सी फिल्म है
1: वो मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था फिल्म नहीं हुआ करती थी।
0: जी जी जी,
1: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग अच्छा। पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
0: हाँ, वो ऐसा नहीं होता
1: ऐसा था। नहीं होता था।
0: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
1: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
0: वाह वाह।
1: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
0: हाँ।
1: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
0: क्या बात है।
1: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे।
0: वाह।
1: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
0: गजब गजब, क्या बात है,
1: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
0: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो,
1: ये 64 की बात
0: है। जी, अब
1: फील ही फील है।
0: ये कहां से आया?
1: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है। पहला सोलो था
0: जी,
1: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
0: जी,
1: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि आ गया है कोई,
0: एक वायलिनिस्ट
1: की
0: एंट्री हो गई।
1: Somebody's
0: जी
1: there.
0: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
1: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम।
0: जी,
1: हम लोग सब यही होते थे यार, ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
0: करिश्माई काम है,
1: करिश्माई काम। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है, रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
0: हाँ।
1: जब प्यार किया तो डरना क्या।
0: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
1: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है
1: और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो भी बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम, मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गजर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
0: जी,
1: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गानों को, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता
1: हूँ। मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
0: और गानों के नोटेशंस करने में
1: वो भी
0: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायोला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए, तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 वायोला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब,
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया, ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4-5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से।
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक

0: जो हाँ, डॉल्बी आप लोगों ने किया था
1: जी, जी।
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसे से हाँ, बहुत लंबा पीस है,
1: बहुत लंबा,
0: ढाई तीन मिनट
1: सारे किए हुए
0: जी।
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का।
0: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ है। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
0: जैसे, इस तरह से
1: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
0: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
1: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपए खर्चा हुआ
0: जी,
1: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है
0: जी जी।
1: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपए पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो
0: जी।
1: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
0: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
1: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने
0: जी, बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
1: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
0: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
1: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाई,
0: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद,
1: क्योंकि क्या उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज,
0: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वो जिस तरह से ऊपर जाता है। वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया,
1: ये सुनाइए,
0: सुनते हैं।

0: देखिए बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये संगीत आप।
1: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है वायलेंस की डबिंग है वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी जी क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया।
1: जी क्योंकि शफी साहब काम करते थे हम लोग बजाते थे, जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ, मैं घर गया
0: जी,
1: चाय पीने चाय पीते हैं चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है
0: आशियाना।
1: आशियाना मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए रूम में बैठ गए, नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है, देखा तो हुआ है इसको अपनी रिकॉर्डिंग में बजाता है ना शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे, मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा, तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: है। नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी।
0: जी जी
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह।
1: आज भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं।
0: जी
1: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के रफी साहब लता जी आशा जी सब उस कुर्सी बैठते, वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी। उत्तम साहब ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है।
0: जी जी
1: तहजीब और इज्जत
0: जी
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
1: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना।
0: जी
1: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब तो मैं उनको जी नाम तो मैं उनको ले नहीं सकता था तो जी जी जी करके बात करता था या अंकल बोल देता था। कल सफी मियाँ आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो क्या लोगे रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की।
0: जी जी
1: क्या उम्र होगी मेरी 48 58 68 24 साल की उम्र।
0: जी जी
1: 23 24 के।
0: जी
1: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए।
0: जी
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूँ।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
0: हाँ
1: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
0: हाँ हाँ
1: वैसे उस टाइम पे 200 250 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
0: तो ये 3 गुना मांगा
1: 750 रुपये।

0: जी
1: बोले ठीक है,
0: 750 रुपये एक गाने
1: का।
0: गजब।
1: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह।
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
0: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
0: जी।
1: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह। प्रीति की वजह से ही हुआ।
1: प्रीति की वजह से। मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
0: नाम लेके पुकारते
1: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
0: हाँ।
1: पता नहीं क्या बात है।
0: अरे
1: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
0: वाह।
1: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
0: जी। नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
1: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
0: जी।
1: माय फ्रेंड का गाना है वो।
0: हाँ हाँ।
1: रफी साहब का गाया हुआ गाना है। नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
0: वाह वाह वाह। ये सुनते हैं, उसके बाद
1: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का
1: जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुना है, हमारे

0: सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया। मदन साहब मिल गए बाहर, उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके।
0: जी जी,
1: वो बाहर बैठे हुए, तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए, तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी, आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज माय
1: फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर, वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ,
1: यू मीन दैट? यस। हाँ, क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा, सुना। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था,
0: फेलिक्स, जिसकी दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरडिया साहब ने वो पोलका सिखाया था।
0: जी,
1: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है, तो वो सुनते रहे।
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में, जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी, आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था।
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरे ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी, तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी।
1: सोनिक साहब, हाँ। इनका एक अरेंजर आ गए थे, ज्ञान वर्मा।
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
0: जी
1: जी, रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम।
0: हाँ,
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया, तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब।
0: जी,
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान, सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया। तो गाना था, हर तरफ अब यही अफसाने, तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना।
1: हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है, और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है,
1: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहा था।
0: ये किस धुन पे किया था?
1: पता नहीं, आई डोंट नो।
0: जी,
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था, लेकिन फौजी शख्स।
1: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा।
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ,
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
0: अपनी तरफ से,
1: अपनी तरफ से बज गया।
0: वाह,
1: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर, आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या या आई प्लेड दिस, तारारी री री तिरी री तारारी तररे तररे री री द द द

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वायलिन होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वायलिन।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहाँ से युवराज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ अब

0: पूरी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। शाम के 5 बज रहे हैं, आप सुनेंगे मराठी ठळक बातम्या।

सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए, बल्कि तब होता है जब कोई साथ रहते हुए भी अजनबी हो जाए। जब यादें तो वही रहें, मगर रिश्ते का एहसास बदल जाए। फिर भी कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जरूर जाते हैं, लेकिन हमारी रूह के किसी कोने में हमेशा बसे रहते हैं।

वो यादें बनकर हमारे जीवन को महकाते रहते हैं, जैसे समय कभी बीता ही ना हो, वो उन्हीं पलों में कहीं ठहर गया हो। क्योंकि दिल के कुछ मौसम वहीं ठहरे रह जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, वो तो बिछड़ने के बाद भी उतनी ही सच्ची रहती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत का अंत नहीं होता, वो किसी रिश्ते के टूटने से मरती नहीं, बल्कि यादों में एक खूबसूरत कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे दिल बार बार पढ़ना चाहता है, भले ही उसका आखिरी पन्ना अधूरा ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचकर नहीं, बल्कि अधूरी यादों में बसकर अमर हो जाते हैं।

मोहब्बत की किताब के कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं तो वहीं कुछ आंसुओं से भीगे हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी लिखे ही ना जा सके, मगर दिल को उन अधूरे पन्नों से भी शिकायत नहीं होती। दिल उन अनकहे अल्फाजों को भी सहेज कर रखता है जो कभी जुबान तक नहीं आ सके, उन ख्वाबों को भी संजो कर रखता है जो हकीकत नहीं बन सके। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल लगती हैं।

यादें भी कितनी अजीब होती है ना। वो इंसान भले ही पास ना हो, मगर उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए पल, उसके होने का एहसास दिल से कभी जाने ही नहीं देती। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है, जो ये विश्वास दिलाती है कि शायद किसी दिन फिर से मुलाकात होगी, वही मुस्कान लौटेगी और अधूरी रह गई बातें पूरी होंगी।

अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे गाया है उदित नारायण ने, इसे लिखा जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

0: देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो

0: तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। अगला गाना कुमार सानू की आवाज में है, फिल्म का नाम है संघर्ष।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया

0: को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले सुनिए ये संदेश।
2: एक विलक्षण गायक
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
2: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विशेष जयमाला में आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा। आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। आज आप सुनेंगे अकॉर्डियन पर रेवाचंद शर्मा की धुने। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चिट्ठी, लेखन सुनील हेत्री अब्राहम, निर्देशन गुरमीत रामल मीत। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार महेश भट्ट पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति विजय दीपक छिब्बर। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और रात्रि 11 बजे सुनिए विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर, कल प्रसारित होगा भाग 318। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 6। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गंगोली। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा सुबह 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री करीना कपूर पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा पर सुनिए उजाले उनकी यादों के। इस पर सुनिए संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए डॉक्टर अजीत मिश्र न्यूरोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान। छह गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। संध्या रजन का समय रहेगा शाम 6:35 पर। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है यादों की बारात। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण, निर्देशन पुरुषोत्तम धारवेकर। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री करीना कपूर पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छह गीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे। आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने पी के फिल्म का गाना सुना, सोनू निगम की आवाज़ में। गीत स्वानंद किरकिरे का था, संगीत शांतनु मोइत्रा का। आइए अब सुनते हैं ओ माई गॉड टू में विक्रम मेंटोस की आवाज़। गीत शेखर अस्तित्व का है, संगीत विक्रम मेंटोस का।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी संवादी न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

अब मैं द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। इसमें कूट तान, पेंच, बल, छूट, जरब और गमक तानों का प्रयोग है। यह क्लिष्ट जरूर है, किंतु श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। तो करुण रस प्रधान इस बंदिश को आप सुनिए।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र 102.8 FM और न्यूज ऑन AIR इस लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप पर भी। शाम के 7:11:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा।

27 नवंबर सन 2000 को बी संतोष बाबू राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 105 कोर्स में शामिल हुए और फिर 2004 में भारतीय सैन्य अकादमी चले गए। एनडीए में वो नवंबर स्क्वाडन से संबंधित थे। 10 दिसंबर 2004 को उन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। यहाँ भी श्रेणी में अव्वल आने पर जम्मू कश्मीर राज्य में तैनात किया गया। 10 दिसंबर 2006 को कैप्टन, 10 दिसंबर 2010 को मेजर का पदभार ग्रहण किया। 2017 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने और पुनः एक बार 2019 में जम्मू कश्मीर इलाके के संवेदनशील मुहिम की निगरानी की और एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए, जिनके हौसले और कूटनीतिक रणनीति के चर्चे अक्सर हुआ करते थे। दुश्मनों में इनका खौफ इस कदर बरकरार था कि कई बार पीछे हटना और दुम दबाकर भागना ही मुनासिब समझा।

लेकिन दुश्मन अपनी करतूतों से कब बाज आता है। यूं तो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमाएं हमेशा से ही संवेदनशील रहीं और इसी सीमा से लगे पड़ोसी दुश्मन की कई चालें नाकाम भी की गईं। फिर भी दबे शोलों की आग हल्की सी हवा से रह रहकर भड़क ही जाती, इसे बुझाने की हर संभव कोशिशें नाकाम हो जाती। पूर्वी लद्दाख की सर्द वादियों में दुश्मन के सीने की सुलगती आग ने धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख को अपनी जद में लेना शुरू किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रह रहकर दुश्मनों की आवाजाही की निशानदेही लगभग पुख्ता हो गई। विशेष जयमाला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। जानबूझकर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की मर्यादा को लांघते हुए शत्रु सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए कई बार घुसपैठ की कोशिश की। बहस बढ़ती और गश्त पर रहे भारतीय सैनिकों के खौफ से ये दबे पांव आगे बढ़ते शत्रु सैनिक गायब हो जाते, लेकिन कुछ समय बाद तस्वीर फिर वही कि पीठ पर छुरा भौंकने की फितरत को लिए ये सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा में रेंगते हुए नजर आते। न ये वाकया थमने का नाम लेता और न ही इनकी फितरत बदलती। सन 2020 में ये झड़प काफी बढ़ गई, जिसमें 14 जून को पीएलए सैनिकों के एक समूह ने 6 जून को किए गए समझौते और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत की धारणा को दरकिनार करते हुए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के समीप न सिर्फ टेंट लगाए बल्कि गलवान नदी के इलाकों में ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बना दी गई और आती जाती इनकी कुछ बख्तरबंद गाड़ियों को भी साफ देखा जा सकता था। चिंगारी के शोलों में बदलने का अंदेशा सेना के आला अधिकारियों को हो गया। यहां बढ़ते खतरे को भांपते हुए सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना के शेरदिल सिपाही कर्नल संतोष बाबू को सेना के हेडक्वार्टर तुरंत तलब किया गया और फौरन पूर्वी लद्दाख के इस इलाके रवाना किया गया। 16 बिहार रेजिमेंट के होनहार अफसर कर्नल बी संतोष बाबू ने इस खतरे से निपटने और एक निश्चित प्लान के तहत पूरी मुहिम को अंजाम देने का निश्चय कर पूर्वी लद्दाख के इस इलाके पहुंचे।

ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को दुश्मन सैनिकों की निगरानी चौकियों की गतिविधियों और उनकी अटैकिंग पोजीशन को बारीकी से समझना था। एक तरफ ये तस्वीर थी तो दूसरी तरफ पीएलए के साथ सभी उच्च स्तरीय वार्ता बेनतीजा नजर आती थी, क्योंकि दुश्मन की कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर था। मौसम बेहद सर्द था। शाम होते ही नीले आसमान के तले सफेद बर्फ की हसी वादियां, हाड़ कपा देने वाली ठंड, ऊंची बर्फीली चोटियां और गहराई में बसी गलवान नदी का बर्फीला पानी। धीरे धीरे शाम रुखसत हुई और रात ने दस्तक दी। 15 और 16 जून की वो सर्द सियह रात, जब बर्फ से ढकी चोटी की दुर्गम ऊंचाई पर बैठे दुश्मन सैनिकों की सुगबुगाहट कभी तेज तो कभी खामोश हो जाती। सामने से कुछ और नजारा कि जैसे खतरा टल ही गया हो, लेकिन हमारी सेना के जवान और कर्नल बी संतोष बाबू की निगाहें इस धुंध से कहीं आगे का मंजर देख चुकी थीं। एक पल को लगा कि दुश्मन सैनिक शायद पीछे हट गए हों, लेकिन ये तो कोरा वहम ही है। ये संतोष बाबू समझ चुके थे। ऊपर ऊंचाइयों पर पीछे की तरफ डेरा डाले दुश्मन सैनिक नीचे की तरफ से भारतीय सैनिकों के आने की ताक में घात लगाए बैठे थे। अपनी सैनिक टुकड़ी को पूरी रणनीति का खाका पहले से ही समझा चुके कर्नल बी संतोष बाबू ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखने की हिदायत दी। हल्की इसी आहट भी हमले का सबब हो सकती थी। कर्नल बी संतोष बाबू इस बात का भी आकलन रखते थे कि ऊपर चोटी पर ज्यादा भारी भरकम हथियार रखने की गुंजाइश तो कम ही लगती है, लेकिन किसी भी वक्त हमले का अंदेशा पूरा था।

साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

मल्ला संतोष बाबू की शौर्य गाथा। जून की सियह रात, रूखे मौसम का वो साफ आसमान, गलन ऐसी कि शरीर का लहू जमा दे। शाम ढले, सन्नाटा पसरने लगा। निचले इलाके से शत्रु पर निगाहें टिकाए कर्नल बी संतोष बाबू और उनके कुछ सैन्य साथी। गलवान का सिहरता पानी सब कुछ अपनी ही जगह तो था कि अचानक कुछ दुश्मन सैनिकों के नीचे की तरफ आने की आहट हुई। उधर कर्नल बाबू ने इशारों इशारों में अपने सैनिकों को समझा दिया कि अब ये शक यकीन में बदल चुका है। दुश्मन की जानिब जैसा अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय सैनिकों ने बाबू की निगरानी में कदम बढ़ाने शुरू किए। अब तक ये अंदेशा हो चुका था कि ये मुठभेड़ इतनी आसान न होगी। इधर शत्रु सैनिकों ने एक के बाद एक तेजी से बर्फीली ढलानों का रुख करते हुए भारी भरकम लोहे की छड़ों और पत्थरों से लैस हमारे सैनिकों की तरफ हमले शुरू किए। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे बढ़ इस इलाके पर धाक जमाने की फिराक में आगे बढ़ते सैनिकों को कर्नल संतोष बाबू ने रोका। असल मायने में इनकी तादाद का अब भी कोई पता नहीं था। पीछे हटने को लेकर बढ़ती झड़प और फिर धक्का मुक्की पर उतर आए दुश्मन सैनिकों की तादाद एक के बाद एक टिड्डी दल की तरह नजर आने लगी। इनकी थाह का कोई पता न था। वो नीचे की तरफ उतरते और कर्नल और उनके साथी आगे बढ़ते हुए इन सैनिकों को पीछे की तरफ जाने की चेतावनी देते। बात बढ़ते बढ़ते जोर जबरदस्ती पर आ गई। अब भी ऊपर ठिकाने पर कुछ और दुश्मन सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। कर्नल बी संतोष बाबू ने अपने फ्रंट लाइन सैनिकों के साथ कमान संभाली। वो इस बात को लेकर अड़े रहे कि दुश्मन आगे न बढ़ने पाए। जैसे जैसे रात बीतती गहमा गहमी बढ़ती गई कि अचानक ऊपर छुपे दुश्मन सैनिकों ने भारतीय सैन्य टुकड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस तेज रफ्तार पत्थरबाजी ने शत्रु सैनिकों के मंसूबों को साफ कर दिया कि और पाने की भूख और प्यास बेजा खून बहाकर भी नहीं मिटती। न सिर्फ पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले बल्कि दुश्मन सैनिकों ने भारी भरकम लोहे की छड़ों और धारदार हथियारों से भी वार शुरू कर दिया। इस यकायक हमले का माकूल जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने भी बहादुरी से इनका सामना किया। इनके हथियार इन्हीं पर दे मारे, शिकस्त देते हुए और साथ ही फेस ऑफ के नियमानुसार परिस्थिति से निपटते हुए हमारे सैनिक अटैकिंग पोजीशन पर रहे और अपनी जमीन पर डटे रहे। इस गुत्थम गुत्था में कर्नल और उनके कुछ सैनिक पूरी तरह से घायल हो गए। कर्नल बी संतोष बाबू फिर भी अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। आखिरकार अपनी जमीन से दुश्मन सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने पूरी कुशलता के साथ घायल अवस्था में भी इस आमने सामने की जंग को अपने नाम किया। कर्नल बी संतोष बाबू ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक ऐसी जंगे फतेह को अंजाम दिया जो इतिहास के पन्नों पर कम ही नजर आती है। उनके जिस्म जहां से अविरल बहती लहू की धारा से भी बेपरवाह रहे वो। जख्मों का दर्द तो फिर कहां, दिल में अब भी वही जज्बा, आंखों में वतन परस्ती का वही सुरूर, बुलंदियों को छूती तिरंगे की वही शान। मातृभूमि से ये वही रिश्ता है जो सांसों के टूटने के बाद भी नहीं टूटता। धीरे धीरे इस विशाल गगन के अंतहीन पथ पर वो सितारा चल दिया जिसकी निगहबानी में कुदरत ने सजदा किए। कर्नल बी संतोष बाबू की सांसें थम गईं, हवाओं का परचम था, चारों दिशाएं सलाम करती रहीं। मां भारती के एक और सुपूत ने मातृभूमि के लिए जीने और मरने का मर्म सबको समझाया। वतन की आन बान और शान के लिए जीना और फना होना चंद खुश नसीबों को ही नसीब होता है। और ऐसे ही थे मां भारती के शेर दिल सिपाही कर्नल बी संतोष बाबू।

साथियों आपको बता दें, कर्नल बी संतोष बाबू ने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़े रहे और कि वो संघर्ष के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी अपनी सेवाएं उन्होंने दी। DRC और दक्षिण अफ्रीकी सेना द्वारा कांगो के एंडुमा डिफेंस यानी NDC विद्रोहियों के खिलाफ भी सेवाएं दी। संयुक्त राष्ट्र मिशन में उच्च ऊंचाई सेवा पदक भी प्राप्त किया। भारतीय सेना के एक ऐसे होनहार अफसर जिन्हें सेना में उनके आला दर्जे के काम और समर्पण के लिए जाना जाता है। पूर्वी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू को अपनी जमीन से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने, इस मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम देने, कुशल रणनीति, सफल निर्देशन, सूझबूझ, अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित 16 बिहार रेजिमेंट के जांबाज अफसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू।

आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे अकॉर्डियन पर रेवा चंद शर्मा की धुनें। आज की फिल्में हैं शोर और विक्टोरिया नंबर 203।

अभी आप सुन रहे थे अकॉर्डियन पर रेवाचंद शर्मा की धुनें। आज की फिल्में थीं शोर और विक्टोरिया नंबर 203। अब इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शान, खुशबू जैन और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे माय फ्रेंड गणेशा 2, इस फिल्म से ये गीत। और श्रोताओं, अब यानी ठीक 8:05 पर आप सुनेंगे मराठी समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है, तो उनको उनके जन्मदिन पर विविध भारती परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के गाने। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम के और श्रेया घोषाल की आवाज़ों के साथ। फिल्म का नाम है जिसमें टू, गीत आरको प्रवो मुखर्जी और मुनीश मखीजा का है, संगीत आरको प्रवो मुखर्जी का।

0: देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना केके की आवाज में है, फिल्म का नाम है वो लम्हे, गीत लिखा नीलेश मिश्रा ने, संगीत प्रीतम का है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

0: राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि

0: 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप्स की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
5: सूर्यकरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारे

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
1: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान की वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम चाहत फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। इसे लिखा है देव कोहली ने, संगीत अनु मलिक का है।

0: कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज। 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है नाम, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में सुनिए काश फिल्म का गाना। गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में मिलाप फिल्म का गाना। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत व्रजभूषण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी। विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई। विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years वेस्टेड। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई, अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं। वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद अ फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं। तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विद सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और काश जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेज ख़त्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज़ मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जो पिछले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसके लिए मैं मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा हैं, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: प्यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथावस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई राज 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

छाया गीत में आज ऐसी नगमे जिनके दो संस्करण हैं, हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अब वैसी नींद कहां जैसी बचपन में आती थी। असली नींद सचमुच बचपन की ही तो थी, पवित्र, निश्चल, बेफिक्र और असीम नींद। अब तो नींद में आहटे हैं, आशंकाएं हैं, सपने हैं, उनींदापन है, बेचैनी है और हैं तरह तरह की फिक्र। ऐसे में याद आती हैं माँ की थपकियां, पिता का दुलार, बचपन की लोरियां।

लोरियां दुनिया की सबसे पवित्र रचनाएं, दुनिया की सबसे पवित्र कविताएं हैं हर भाषा की लोरियां। लोरियां बची रहें, बचा रहे बचपन, बची रहे ममता। आइए इस लोरी को सुने जो दो अलग अलग आवाजों में आप तक पहुंचेगी।

तुम्हारी आंखों से रोशन है हमारी शाम और सुबह, हमारी दुनिया में रंग है तुम्हारी आंखों की वजह से। तुम हमारी दुनिया की चमक हो, तुम्हारी आंखों में बो रखे हैं हमने अपने कुछ सपने। देखो संभाल कर रखना हमारे सपनों की ये नाजुक दुनिया।

0: क्या है।
1: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: क्या
1: फिल्म चिराग, मजरू सुल्तानपुरी, मदन मोहन। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
2: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: छाया गीत इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विको टर्मरिक

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
0: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
3: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
0: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
3: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।